0: मार मैं पाचो
1: इटी विनो और रेडियो और रेडियो
0: और रेडियो और रेडियो और रेडियो
2: ये मारो टियरी आ दुए चिला मामा ओला रुपिए गिना मत कौन एंड को किती